0: को सुले भग ग्राम भीतर तितक रुयु
1: गलक मने के देखिन जयान वही आ लग मने के देखिन हला दे दकानी

0: तुमको वाह भी
1: बमंगा तक हमको मिन्ना बमंगा केर संजय अंबाई से रूफुक्तान नंबुमाइंस फावटन से ने बमाइंस अनोटन समास ने निन्ना मिचे ट्रम्प सोफा अंड्रासन रासलाव टेनिस फिजरा ना ताने ते पियांस चाते वामनी रोपुल ते उयोन ना तमले ले फोरुन निस फंड्राइ सना नारा नंद्राइ ते ओटन फिट फिटिंग ले प्रेस ना इस मुझांस ते ना प्रेस ना फोटन ने कार्टे मोबाइल ते फिर पेरां फुट से ले सुरात ना टेंटे से सेम बस सुरात प्रेस ना ते सान ना तो ने ने वे अंदो सुरात ना रा वो ट्रेन ये वेतना मेनो तुझी सुना तो न फुंड का ये सिस्टी लो इस